0: मतलब हुंदा दादा पिता दा पिता। कहिंदे मेरे दादा जी सरदार मताब सिंह जी मीरा कोटिया पंजाब दा इलाका छड के इथों दूर चले गए।
1: जय नगर पहुंचो जाए,
0: जयपुर नगर दे विच जो राजस्थान दी बड़ी प्रसिद्ध राजधानी है, राज घराणा है, जयपुर नगर विच सरदार मताब सिंह जी चले गए।
1: राजे सो मुलाकात कर,
0: जयपुर दा जेड़ा राजा सी ओ गुरु के सिखा नाल सांझ रखदा सी, क्योंकि इहदे वडेरियां ते सतगुरु जी दी कृपा दृष्टि रही है, इस करके गुरु घर नाल गुरसिखा नाल इहदी सांझ सी। जयपुर दे राजे नूं भाई मताब सिंह जी जाके मिले हन,
1: लई चाकरी लाए
0: और उत्थे जाके नौकरी करन लग पए। भाई मताब सिंह जी सिपाहियां विच भर्ती हो गए।
1: चाओ पई सो सुन और सिंह तह आए,
0: जदों सरदार मताब सिंह जी बारे बाकी सिंघां ने जिहड़े पंजाब च रहिंदे सन उन्हां ने सुनिया कि मताब सिंह जी जयपुर जाके जयपुर दे राजे कोल सिपाही भर्ती हो गए ने, ता ये सुन के होर भी कई सिंह पंजाब तो चाला मार के जयपुर पहुंचे हन।
1: मताब सिंह तेह बचन अलाए,
0: भाई मताब सिंह कोल आए सारे सिंह पंजाब दे विचों कई सिंह इकट्ठे होके पहुंचे जयपुर। भाई मताब सिंह नूं जाके सिंघां ने फतेह गजाई और सरदार मताब सिंह जी उन्हां सिंघां दा हाल चाल पुछ के उन्हां नूं पुछदे हन।
1: देह वतन हम बात सुनाए,
0: कहण लगे खालसा जी तुसी पंजाब चो आयो, मैनूं तां वाहवा समा हो गया आया नूं, इधर कई महीने हो गए है, तुसी हुणे आए हो, दसो पंजाब दे हालात किहो जे हन, अपने वतन दे की हालात हन।
1: कहें कहें तुरकन डेरे लाए,
0: तुरकां ने किथे किथे डेरे लाए ने, तुरकां ने किथे किथे अपनियां छावणियां पाईयां हन।
1: सिंह कहियो कछ पूछना बात,
0: जदों सरदार मताब सिंह ने ना अपने साथी सिंघां नूं पुछिया पंजाब बारे, तां उह सिंह कहण लगे सरदार साहब पुछो ना भी तुरकां ने की कुछ नहीं कीता,

0: गुरु रामदास साहब दे दरबार दी होई बेअदबी दा बदला ले लिया।
1: कितक देर कर रौला पयो,
0: कहिंदे जदों लै गए सिर वढ के फिर बाद च रौला जिहा पिया वी की होया।
1: सिखर दुपहरे सुनत किछ दयो,
0: कहिंदे सिखर दुपहरा सी कोई लुकिया बैठा सी, कोई छावें बैठा सी, कोई तंबू विच जा बैठा सी, एकदम रौला जिहा।

0: दुष्टा दे मन च डाढा दुख होया भी साडा मसा मारिया गया।
1: मसे को जो हुतो परवार,
0: हुण जेड़ा मसे रंगड़ दा टब्बर सी परिवार सी,
1: लाहौर जाए तिन करी पुकार।
0: उन्होंने लाहौर जाके पुकार कीती जकरीए खान कोल, ओह तू कहिंदा सी मैं सिंह छड्डे नहीं, ओह कौन आ गए जेड़े साडे जथेदार साडे सरदार मसे रंगड दा सिर वढ के लै गए हन।
1: हमरे खूनी पकड़ मंगावो,
0: मसे दा पुत्र रोंदा कहिंदा मेरे प्यो दा सिर वढ के लै गए, घटो घट ओदी लाश तां साबत कर दियो, ओदा सिर तां वापस मंगा दियो।
1: टुक टुक कर तिन को कटवावो,
0: जां जेड़े लै गए आ वढ के मसे रंगड दा सिर, उन्हां दे टुकड़े टुकड़े करके कट दियो।
1: ना तर हम जावेंगे दिल्ली,
0: कहिंदे हे सूबा लाहौर जे तू ना सुनी साडी फिर असी दिल्ली जाके बादशाह कोल पुकार करांगे।
1: करे नवाबी तुमने ढिल्ली,
0: तू नवाबी ढिल्ली कीती आ, कादी तेरी नवाबी है, तेरी नवाबी विच तेरा वड्डा फौजदार मंडियाली दा मस्सा रंगड़ ओदा बैठे दा सिर वढ के लै जाण, तेरी नवाबी कादी नवाबी है जकरिया खान, तेरी नवाबी ढिल्ली है।
1: जब नवाब ने यो सुन पायो,
0: जदों जकरिए ने आ गल सुनी,
1: सिंघन मसा मार गवायो,
0: ये सिंघा ने मसा मार के गवा दिता है।
1: परे गिरज जिम सिंघन सिंह असमानो,
0: एदा आके पे जिमे गिद्धा असमान तू गिरजा आके पैंदियां हन।
1: आवत जावत किने ना जानो,
0: इहदे पता नहीं लगा ना उहनां दे आउंदिआं दा पता लगा ना जांदिआं दा पता लगा, ओह आए कित्थों धरती चों उगे के का डिगे, पुछदा कौन सन, पड़ताल कर रहा है। वो कथा आप जी अगलिया प्रसंगा च सरवण करोगे। गुरु के पंथ का पवित्र इतिहास कथन करदिया हुई भुलां चुकां दी खिमा, गुरु घर के महान शहीद सरदार सुखा सिंह जी, सरदार मताब सिंह जी, जिन्हों का इतिहास अगे भी नाल नाल आवेगा कि फिर जदों ये मस्से का सिर वढ के लै गए तो बाद परिवारों को कितना दुख दिता गया। वो कथा भाई रतन सिंह अपने टब्बर की कथा सुना रहे, उन्होंने अपने परिवार की, अपने दादे की, अपने पिता की एक कथा लिख रहे हैं। इस करके बड़ी प्रमाणिक कथा है। आप जी ने आने वाले दिनों में हाजरियां भर के गुरु जस सरवण करना, हो भुलां चुकां की खेमा।

0: जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोट महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाय कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहा, नानक प्रभ अवनासे। ताकि सेवन बिरते जासे, आनंद करह तेरे दासा। जा पूर्ण हुई आसा, बिलाबल महला पंजेवा। ताती वाह न लगे, पार ब्रह्म शरण आये। चौ गिरद हमारे, राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जन बणत बनाई। राम नाम आओ खुद दियाई, काली बलाई रहा। राख लिये ते रखन हार, सा ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभ भय सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू नह छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजेवा। मन में चित बो चित बनी, उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन